0: दशम पहा अनुतुनाय दशम हाता लखंड रेडियो आईटीएन सभी श्रीलंकीय हंड
1: विलाप रात्रि अठाई विनाडी हाय

हमें सूत्र देशना बर महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्यावित अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरें महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वोगे तारका समूहयक पिरिवरा बेबलेन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्वतलेम बुद्धाज्ञा चत्रेट हसु करमिन पवत्वन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक् दृष्टिक दिवितेवताउं वहन्सेलागी एल्म बेल्महा आशीर्वादे अपेक्षावेनि एदा बुदुरजानन वहन्सेगे श्रीपाद मूलेहि गौरवाभिवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन् सित सपमेनि महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंबते वेनम ए अय किसीदा अपायगामी वन्नी नटे कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयत स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मेवनाही विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशी करमिन जीवितेत एलमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांति सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयकी सियलु देवियन के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महासमय सूत्रय सदह सितिन सज्ञानय करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमरे शांत स्वामी वहन्से।